وأنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطرأهم ومن أطرأهم كان أضر عليهم. ताकि ये ना हो कि इन लोगों के जो अमल करने वाले हैं बिदअत पे इनके गुनाह भी उसके सर पे हो. इस एक बिदअत बिदअत इजाद करता है, गलत लोगों में जाके गलत पैगाम देता है. जहां तक ये पैगाम जाता है जितने लोग उस पर अमल करते हैं उनका गुनाह उनके सर भी है और उन सबका गुनाह इसके सर भी है. लियहमिलू औजारहुम कामिलतन यौम अलकियामा व मिन औजार अल्लजीन युज़िलूनहुम बगैर इल्म अला सा मा यज़िरून. सारे के सारे अपने अपने बोझ भी उठाएंगे और जिनको इन्होंने गुमराह किया बगैर इल्म के उन सब के बोझ भी उठाएंगे. कितने बुरे बोझ उठाने वाले हैं ये. रहमत है कि नहीं? अच्छा, तो जो इनकी तारीफें करते वो क्या है? शेख साहब इमाम साहब फरमाते हैं वमन अतराहुम कान अदर अलैहिम. वो जो इनकी तारीफें करते बिदातियों की, यह उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाले हैं. अत्तहदीब जिल्द नंबर 249 249. ये रहमत क्यों थी यूसुफ बिन असबात की? अच्छा, एक शख्स जिसने बिदअत की है या गलत मनहज पर कायम है, अब उससे आगाह किया है. एक शख्स ने पूछा है, इमाम साहब ने फौरन आगाह कर दिया कि यह गलत है. साल को पता नहीं था. बात इल्म की होती है, वफ़ौक़ कुल ज़ी इल्मिन अलीम. उसने सवाल किया, क्या गिबत तो नहीं है? जवाब में देखिए, अहमक अहमक क्या नरमी है. इस मुकाम पर नरमी है, यह सख्ती है. लेकिन उसके लिए, क्योंकि सवाल उसका ऐसा है कि तुम्हें तो यह पता होना चाहिए कि बिदअत के रद्द करने में गीबत होती नहीं है, और तुम इल्म के जमाने में रहे तो कहां हो तुम? इस बात तो अभी तक खबर नहीं है तुम्हें. सुभान अल्लाह. यूसुफ बिन असबात है कौन और क्यों इतनी सख्त नरमी, ब्रैकेट में सख्ती क्यों करने वाले हैं? नरमी बताइए क्यों नरमी है, लेकिन दुनिया वालों को सख्ती नजर आती है. वल्लाह हर सरफी आलिम जो हर बिदअत का यह बात मनहज को रद्द करते हैं, वल्लाह उनके लिए उनके माओं से और बापों से भी ज्यादा खैरख्वाह है. वो तो हक बात नहीं मान रहे ना. ये देखे हक बात मान, अल्लाह ताला तौफीक है उनको, तौफीक हक बात मानने की नहीं है, वो नहीं मानना चाहते. वल्लाह ये उनको मना कर नसीहत करते वो भी नहीं सुनते. फिर उनकी गलतियां जब लोगों के सामने रख देते हैं और लोग जो इस गलती पर अमल करना शुरू कर देते हैं और इस नसीहत से रुक जाते हैं, उसके लिए खैर है कि नहीं? अल्लाह के लिए मुझे बताएं खैर है कि नहीं है? आज कौन कसूरवार है जो उनको रोकता है अहले बिदअत को या अहले बातिल को, उनको नसीहत करते वो कसूरवार है, या जो इनको मना करते हैं और इनके खिलाफ प्रोपेगंडे करते तोहमत लगाते हैं उनका कसूर है? सुभान अल्लाह. आगे सुने, यूसुफ बिन असबात है कौन, इसकी जिंदगी कैसे बदली है? सुने, खुद फरमाते हैं यूसुफ बिन असबात, फरमाते हैं कान अबी कदरियन, मेरा बाप कौन था? कदरी था. वह अखवाली रवाफिल, वो मेरी मां मेरे मामू क्या थे? राफिली थे. फअंकदनिल्लाहु बिसुफियान यानी अथौरी. अल्लाह मुझे कैसे बचाया, किससे बचाया है? एक शख्स ने इसकी जिंदगी बदली है, सुफियान थौरी ने. अगर सुफियान थौरी खामोशी इख्तियार करता, हक बात ना करता, ये ना बताते ये कदरी है, ये मुतज़िली है, ये जहमी है और ये राफिज़ी है, तो इसकी हिदायत का सबब कौन बनता? आज बाज लोगों की आंख ही निकल आती है अगर किसी के खिलाफ बात करते हैं ना, उनके पैर तो जमीन निकल जाती है कि इसने कैसी बात कर दी है. उलमा खामोश है, फुलान खामोश है, फुलान खामोश है, ये कौन होते बातें करने वाला? जो खामोश उसे जाके पूछे क्यों खामोश है. लेकिन आज जो उलमा और तलबे जो बात कर रहे हैं और हक बात कर रहे हैं, इंसाफ से बात कर रहे हैं, अदब की तरफ रहकर बात कर रहे हैं, वो कसूरवार क्यों है? अगर बात और सलफियत आपने नहीं समझी तो आपका कसूर है, लेकिन जो समझ रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? फिर सुन ले, قال يوسف بن اصباط كان ابي قدريا واخوالي روافض فانقذني الله بسفيان. لالكائي شرح اصول اعتقاد السنه والجماعه امام لالكائي كي جدا بريك صفحه نمبر 138. حوالے بھی سن لے, کتابیں پتہ نہیں عقیدے کتابیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے اللہ اعلم, لیکن یہ عقیدے کی وہ کتاب ہے جو سلف علماء کا نزدیک معتبر کتاب ہے, اور اس کتاب کا اکثر علماء سلف علماء ذکر بھی کرتے ہیں.